0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप द नाम एक है वो है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला अते करण शर्मा नु कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना हो एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 905-828-5800 ते कॉल करो।
2: मैं थोड़ा अपना वकील ब्रिज मोहन। पिछले

0: एक्सपर्ट।
1: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और

सतगुर होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को मानते हुए जुट चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान, जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान, प्रभ संत दे नाल।

Myra Academy अपने यूनिक ते सुपर सेटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वे जाने जाते हैं। हुने कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 Kennedy Road, Unit 2, Brampton, Ontario।

3333 और 6430 एरन मिल पार्क वे। फोन नंबर मिसी सागा का नंबर है 905-542-1333। लंडन, हैलीफैक्स और विंडसर दे विच भी ब्रांच है।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 47 702 V23।
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: ओए ट्रक कारा लिया, जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां, की करां
3: मैं। सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप, PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा, मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन।
5: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दीआं मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है। इन्ना ही नहीं, 4-wheelers अते 18-wheelers दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है। जे तुसीं ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो,
3: कॉल करो जे एन गैरी नूं
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533 ते
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
6: समा देने लई शुक्रिया जी, तुहानू ते साडे रेडियो नाल जुड़े सारे लिसनर्स नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते ते आदाब। मॉर्गेज रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी अपने लिसनर दी कॉल कर सकदे ने मैनू रशमीत कौर नूं 6475394499 जां गूगल कर सकदे ने रशमीत कौर मॉर्गेज ब्रोकर। गलबात करांगे जी अस सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट बारे। सिक्योर्ड मतलब जड़ी की तुहाडे घर दे अगेंस्ट लाइन ऑफ क्रेडिट बन सकती है। वधिया प्रोडक्ट है स्पेशली उन्हां क्लाइंट्स वास्ते जिहड़े की अपनी एग्जिस्टिंग बैंक दी मॉर्गेज नूं तोड़ना नहीं चाहते किसी भी रीजन करके, कि वधिया रेट मिलिया होया जां फिक्स रेट ते हैगी है जिहनूं तोड़न ते पेनल्टीज पै रहियां ने, बट एट द सेम टाइम घर विच इनफ एक्विटी बन चुकी है जिन्हों असी यूज करके फर्दर कोई इनवेस्टमेंट्स करना जा रहे हैं, जां अपनी डेट कंसोलीडेशन हैगी है, जां वैसे ही बढ़ा के रखना चाहते हैं कि किसी भी समय सानू लाइन ऑफ क्रेडिट की लोड़ पै सकती हैगी है। हमेशा एम्फसाइज करती हूं हर क्लाइंट की सिचुएशन जिहड़ी है वक्री होंदी है, ऑलवेज कॉल करो ये वेखण वास्ते कि तुहाडे वास्ते की ऑप्शन अवेलेबल ने। ते जिदा असी अकाल मॉर्गेजेस ते हमेशा कहने आ, जैसे एक बारी तुहाडी फाइल रिव्यू करके हाँ कहती ते असी हमेशा अपने वादे ते पूरा उतरांगे। बहुती जानकारी लई कॉल कर सकदे हो मैनू रशमीत कौर नूं फ्रॉम अकाल मॉर्गेजेस 6475394499 6 47 549 4499 6 47 549 4499। धन्यवाद।

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा कॉल 9054608888 दैट्स 9054608888
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ
3: जिंदगी हैरानियां नाल भरी हुई है पर तुहाडे परिवारां दा फ्यूचर उन्हां विचों एक नहीं होना चाहिदा प्लैनेट इंश्योरेंस तो कीती हुई लाइफ इंश्योरेंस नाल तुसीं अपनी लाइफ दी सारीआं इंपोर्टेंट चीज़ां नूं प्रोटेक्ट कर सकदे हो ते साडे प्लान अफोर्डेबल ते फ्लैक्सीबल भी ने ते असीं उन्हां नूं डिजाइन करदे आं तुहाडी नीड दे हिसाब दे नाल टू गिव यू दैट पीस ऑफ माइंड ते तुसीं कॉल करना है मैनूं विधि छाबड़ा फ्रॉम प्लैनेट इंश्योरेंस ते मेरा नंबर है 416-524-3535 416-524-3535
4: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰ ਫੋਨਸ ਮੋਰ ਪਲਾਨਸ ਮੋਰ ਚੋਇਸ
5: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's

0: हीट वेव आ गई।
1: की गल एनी जल्दी?
0: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
1: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
0: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99 च।
1: ओहो,
0: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
1: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
0: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा wholesaleclub.ca ते जाओ।
2: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।
3: 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80 32 55 80
4: serving Brampton, Mississauga, Toronto,

गुड मिड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाटला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों, आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नैशनल और इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के किरण जी वतनों दूर प्रोग्राम तुहाडे लई पेश करनगे। खबरां होणगीआं, बहुत सारा होर समगरी होएगी, नाल दी नाल हरप्रीत सैनी जी भी अपनी हाजरी लाउणगे। सब तो पहला छतरी छत रिपोर्ट हाजर है। अज 5:42 ते सूरज सिंह आया, 8:47 ते चले जाना मामा चंद सिंह लवारस जा, शाम नूं 5:35 ते आएगा, सवेरे 3:27 ते चले जाना। अज दा जिहड़ा तापमान है यह 27 डिग्री तक जाएगा, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड। कल नूं 24 डिग्री, मिक्स ऑफ मोस्टली सनी रहेगा। फ्राइडे नूं मोस्टली सनी 24 डिग्री, संडे नूं 20 डिग्री सूरज चमकदा रहेगा और मंडे नूं 21 डिग्री सूरज चमकदा रहेगा। सब तो पहला जानकारी दिने क्विक ट्रक लू वाले की। मई 28 तरीक

प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीता तो मर जाता, ना पीता तो भी मर जाता। यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सबर होता, सबर ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने निकलता हूं आराम छोड़कर। हुनर सड़कों पर तमाशा करता रहता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ऐ जिंदगी, पर चुप हूं इसलिए कि जो दिया तूने वो बहुतों को नसीब नहीं होता। दौलत की भूख ऐसी

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इसलिए आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया। टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाली सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 289-801-0566। नोबेल फ्रेश फूड।
6: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
7: 416-570-0157 सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1150
1: भाई साहब जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानु सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-5500 0
3: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
4: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
3: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
5: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रंगा पै गया। टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल आले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 गिलिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
6: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है।
7: 416-570-0157
8: ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ
9: ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ
10: ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ
8: ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਾਰੇ
10: ਬਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਆਓ ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਓ ਤੇ 100% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਟਰੱਕ 11 AM to 6 PM ਆਲ ਡਰਿੰਕਸ 50% ਆਫ ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-429-4040 ਟਿੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ।
11: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road East Upper Airport and Derry the intersection upper to see cheap flight tickets dipal de vichu Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options sunu chahide ne ja tusi visa services dipal de vichu puri family vacation upar jaan di soch ne jithe tanu all inclusive vacation packages bhi milde ne pahunchna waji Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection upar call kar sakde ho 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travels Airport and Derry the intersection over.

0: super visa, nanny, work permit, farmer, investor, या self-employed file, गल की immigration record problem में solution लाने, community दे जाने पहचाने, अधिक तजर्बेकार immigration consultant, Gary Whitman मिलो।
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे immigration का कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था, CIC immigration, हुने ही कॉल करो, 416-456-6161.
2: जैलो टायर सेंटर से तुम ब्रांड ट्रकों के टायर यूज टायर चुवा सकते हो। इसके अलावा ट्रकों की चली बस बरामद भी की जाती है। एंड पेन फ्रंट एंड बुशिंग और रोड लीफ स्प्रिंगा का काम भी किया जाता है। ट्रकों की सेफ्टी इंस्पेक्शन और ट्रेलर की सेफ्टी इंस्पेक्शन ट्यूबवेल की सेफ्टी इंस्पेक्शन भी की जाती है। 24/7 रोड वारंटी जारी है। अब ही आओ 170 गिलोन रोड नंबर 17 170 गिलोन रोड नंबर 17 1-800-647-3021-322-345-302-13-22 जेरो टायर सेंटर।
0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार कोल लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है। अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: पैसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू कोल करवाई है। जेकर तुसी भी किसी तरह दे लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तों वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिम्राज सिंह सिद्धू ही दवा सकदे ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस जां विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 4-6-457-3381।
0: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही नहीं हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-453-3381 416-457-3381।
1: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Swere da to sham 7 baje tak on dining and takeout. Maza labo Sunday nu paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana bhatura. Wednesday, lajwab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza labo saag makki di roti da. Hey, yummy deals are simply Indian. This sariya hi location se. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, simply Indian.
4: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੌਰਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਫੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ
5: ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀਲਮ ਸਿਡਰੂ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
4: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।

क्या बात है, वीकेंड आ रहा है, मौसम बहुत प्यारा खूबसूरत गर्मा गर्म है, धुप निकली है पूरी। सो एंजॉय करो इस खूबसूरत प्यारे जी वैदर नू, ते थोड़ी जी वैदर दी होर भी इंजॉयमेंट नू वधाउणे यार, कट्ठे गीत संगीत सुनिए, गल्लां बातां करिए, रौनक मेला फुल बटा फुल। 9 बजे तक असीं तुहाडे नाल, 9 बजे तक भंगड़े भी पहिणगे, गिद्दे भी पहिणगे, गावांगे खूब, ते खाओ पीओ ऐश करो मित्रो, दिल पर किसदा दिखायो ना, ते दारू पी के गड्डी चलायो ना।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है यार, अमेजिंग। सो प्रोग्राम है पंजाबी रा ते स्टूडियो का नंबर है 905-673-3337 905-673-3337 ते गलबात थोड़ी साड़ी हो रही है ते जरूर एनी टाइम कोई भी गीत संगीत सुनना दस दिया करो। इंस्टाग्राम से बड़े थोड़े मैसेज आते रहेंगे, थैंक यू। कोई भी नंबर चाहिए किसी भी बिजनेस परसन किसी भी साढ़े स्पॉन्सर के, इंस्टाग्राम पेज है साडा पंजाबी लहरा PUNJABILEHRAN इंस्टाग्राम से मैसेज कर दो ते थोड़े लिए कोई भी नंबर चाहिए हाजिर ने। मनजीत साढ़े नाल ने अपलायंस जंक्शन तो, मनजीत वेलकम।
1: थैंक यू सो मच नवी, ते प्रोग्राम सुन रहे सारे श्रोतियों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। ते इस वीक दीआं स्पैशल डील्स ने, सब तो पहले जिन्हें भी क्लाइंट इस टाइम अपना किचन रेनोवेट कर रहे हैं, बिल्ट इन अपलायंसिस दा पूरे दा पूरा कॉम्बो सैट है जिदे विच 36 इंच दा आइस एंड वाटर डिस्पेंसर वाला काउंटर डेप्थ बिल्ट इन फ्रिज, 36 इंच दा बिल्ट इन कुकटॉप, 30 इंच दा बिल्ट इन वाल ओवन ते माइक्रोवेव कॉम्बीनेशन विद बिल्ट इन स्टेनलेस स्टील दी डिशवॉशर, $13,000 दी वैल्यू दा पूरे दा पूरा बिल्ट इन अपलायंसिस दा बंडल है जिहड़ा कि सिर्फ $6,999 च इस वीक तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। जिन्हें भी इन्वेस्टर इस टाइम प्रोग्राम सुन रहे ने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे पांच अपलायंसेस दा कॉम्बो है जिदे विच 36 इंच दा फुल साइज फ्रिज, ग्लास टॉप वाला इलेक्ट्रिक स्टोव, टॉल टब दी डिशवॉशर विद वॉशर ते ड्रायर, $5,500 दी वैल्यू दे पांच अपलायंसेस दा कॉम्बो है जिहड़ा कि सिर्फ $3,199 च इस वीक तुसी अपलायंस जंक्शन ते लगा सकते हैं। ते लास्ट दे विच नवी सॉकर वर्ल्ड कप आ रहा, सैमसंग दा एक नवा टीवी आया मिनी एलईडी करके जिदे च सॉकर मोड है, उदे विच प्रॉपर सॉकर दे रिलेटेड उन्होंने कंटेंट जिहड़ा पाया जिदे विच तुहानू ग्राउंड दा कलर वगैरह पूरा लगेगा। 65 इंच दा टीवी है जिहड़ा कि $1,300 दी प्राइस तो एक्सक्लूसिव घटा के $899 च सॉकर मोड वाला मिनी एलईडी सैमसंग दा नवा टीवी है 65 इंच दा तुसी लगा सकदे आ। दो लोकेशनां तो असीं सर्व करदे आ, ब्रैम्पटन वेस्ट मिसिसागा स्टील्स ते ब्रैम्पटन ईस्ट एयरपोर्ट रोड एंड क्लार्क। नंबर टू कॉल इज
0: 905-450-0054-905-450-0054 ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਟ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 60 million ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, 60 million ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ 60 million ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਸਰਾਸ਼ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਾਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ।
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਾਸ਼, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਇਸਮੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਅਭੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ, ਆਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਜੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ 2 ਬੈਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਇਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਈਅਰ ਕੋ, ਤੋ ਉਸਮੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਆਪਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਸਟੇਟਸ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਐਂਡ ਆਪਕੀ ਇਨਕਮ ਜਿਤਨੀ ਕਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਸਕਿੱਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਂ, 30 to 100,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਂ, ਸੌਖੇ ਜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਜੋ ਹਾਫ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਕੋ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਮਾਊਂਟ ਕੋ ਕਹੀਂ ਵੀ ਕੈਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਮੇ ਕੋਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਸਮੇ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੋਲੈਟਰਲ ਨੋ ਸਿਕਿਉਰਟੀ, ਕੋਈ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ।
0: ਠੀਕ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾ ਸਰਾਸ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
2: ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਆਪਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਪੇ, ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਇਨਕਮ ਕਮ ਹੈ, 2024 ਕਾ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਭੀ ਦੇਖਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਕਹੇਂਗੇ ਆਪਕੀ ਇਨਕਮ 25,000 ਹੈ, ਵਾਈਫ ਕੀ 30,000 ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਕੇ 3 kids ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੇ ਅਪ ਟੂ 100,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਸੇ ਹਾਫ ਪੈਸਾ $50,000 ਇਜ਼ ਨੋਨ ਰਿਫੰਡੇਬਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ। और कहीं भी आप सारे अमाउंट को कैसे भी खर्च कर सकते हैं। और जो लोन भी होता है ना, वो आपने अगर 1 साल का कोर्स है तो 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है। शुरू में ब्याज दर है 0% 1 से 1.5 साल, उसके बाद ब्याज दर है 2.5% पूरे साल का। हमें कॉल्स आते हैं, अभी कॉल आए जैसे हस्बैंड वाइफ है, ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है, तो उन्होंने बोला कि हमारी कितनी फंडिंग बनेगी। हमने उन्हें बोला भी आपको नेट ग्रांट आ रही है $14,000, क्योंकि बच्चे नहीं उनके, राइट, 1% पड़ेगा दो में से, फैमिली ऑफ टू में से। तो उन्होंने बोला अच्छा इसमें से कॉलेज की फीस जाएगी। मैंने कहा नहीं, कॉलेज की फीस माइनस करके बताया मैंने आपको $11,000। तो मतलब लोग अभी समझते हैं कुछ कैच होगा, देयर इज नो कैच इन इट। हाँ, मैंने एक बात जरूर बोली उनको, अगर आप 1 अगस्त के बाद आएंगे फैमिली ऑफ टू में, आपको जो आज 14,000 की नॉन रिफंडेबल ग्रांट जो आपको कॉलेज की फीस माइनस करके आपके खाते में आ रही है, साथ में 17,000 का 0% पे लोन आ रहा है, 1 अगस्त के बाद सारा ही लोन आएगा, ग्रांट वर्ड यूज ही नहीं होगा उनके केस में। तो अभी फायदा है, अभी एनरोल करें, फंडिंग हासिल करें, सोखेचे कोर्सेज करें, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक।
0: नंबर है सरांश दा, तुसीं हुणे लिख लो 4372643175 437-264-3175-3175। सरांश कोर्सेज केड़े केड़े ने ते डॉक्यूमेंट केड़े लगदे आ?
2: हाँ जी, कोर्सेज ज्यादातर क्लाइंट्स चूज ही करते हैं, लाइक फुली ऑनलाइन कोर्सेज। अब आप हमारे क्लाइंट ज्यादातर हैं 40-50 साल के, तो हम उनको उन कोर्सेज में नहीं डालते जहां वो बैग पैक लेके लंच बॉक्स लेके कॉलेज जाएं। कोविड के बाद से फुली ऑनलाइन कोर्सेज मिनिस्ट्री ने अलाउ कर रखे हैं। फुली ऑनलाइन कोर्सेज है मैनेजमेंट के, अकाउंटिंग सीखें आप, 3 घंटे आपने देने मंडे टू फ्राइडे। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो सेल्फ स्टडी मॉडल पे हैं, उसमें आपका एफर्ट कम लगता है, बहुत इजी है वो। साथ में अगर आपको HVAC जैसे स्पेसिफिक कोर्सेज करने हैं, प्लम्बिंग वाले, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट, PSW, वो भी है। सारे कोर्सेज गवर्नमेंट फंडेड है, आपकी जेब से पैकेट पैसे नहीं जा रहे, उल्टा आपकी जेब में लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में पैसे डायरेक्ट डालती है, मेरे में नहीं, आपके अकाउंट में। 30 से लेके 100,000 की फंडिंग, जिसका हाफ पैसा क्या है, नॉन रिफंडेबल टैक्स फ्री ग्रांट्स।
0: नंबर सरांश दा 437-264-3175-437-264-3175-3175 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਰਾਸ਼ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਲਦੀ।
2: ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਰਿਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੱਚੋ ਕੇ, ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕੋਈ ਇਸਮੇ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ। ਉਲਟਾ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਕਮ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਤੇ ਹੈ ਇਸਮੇ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕੈਚ ਇਨ ਇਟ। और लाइक इसमें आपका सर्विस कैनेडा नाम का डिपार्टमेंट है, वो डील करता है, CRA लोग डरते हैं तो वो डील नहीं करता है इसको। और गवर्नमेंट आपके अकाउंट में फंडिंग 30 से 90 डेज में डालती है, ये नहीं कि आपने आज एनरोल करा कल डाल दी, नो। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को जाते हैं, 30 से 90 डेज में वो असेस करते हैं, आपको एस्टिमेट तो वह भी दे देंगे, फिर फंडिंग रिलीज होती है। तो ये नहीं कि पहले सीबा लोन की तरह नहीं, आज पैसे दी कल मांग लिए, ना। पहले असेसमेंट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, हमारी फीस काम होने के बाद $199 से $499 है, कोई परसेंटेज कोई कमीशन नहीं है। जैसे गवर्नमेंट इतनी चीजों में, फॉरन एड में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इधर उधर लगा देती है, वैसे गवर्नमेंट एजुकेशन इन्वेस्ट करती है, कोई कैच नहीं है जी। कॉल करें 437-264-3175, 437-264-3175, हुने कॉल करो 437-264-3175, 437-264-3175। साडा प्रॉपर ऑफिस है जी, 1,000 square feet का, 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड पे। हम टिम होटन पे नहीं मिलते क्लाइंटों से, हम 7 years से बिजनेस में, हजारों क्लाइंट को ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं। 200 एक्सपर्ट बुलेवर्ड, आप कल हमारा पंजाबी लहरा का लाइव भी है, आप इन्वाइटेड है।
0: वेरी गुड, क्या बात है। सो जरूर सरांश का नंबर नोट कर लो, 437-264-3175। सरांश बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू जी,
0: थैंक यू जी। 2586 हेलो,
3: सचिकल भाजी की हाल है?
0: वधिया फिर, किवें हो?
3: वधिया वधिया भाजी, गाना ही ला लो यार।
0: केड़ा लाइए?
3: मलकीत सिंह दा ला दो, पटता शकीन मुंडा फुल वर्गा ने तो रख दी शकीनी ला के
0: पटता। अच्छा मलकीत जी दा ये केड़ा गाना है? एक मिनट मैं लब लो, पटता
3: किन्नी सोहनी लगे जदो हसे कुरी वट के लंघ जे नीवियां पा के।
0: अच्छा, क्या बात है, ला देने, चक देंगे पट्टे।